विकास सुनार सुनचहरी गाउँपालिका चार सिउरी चैते थान टोल रोल्पा हाल बिरानो देश साउदी अरबियाबाट नयाँ उमङ्ग नयाँ उत्साह अनि लिएर हर्ष फेरि आयो नव वर्ष विकासलाई गति मिलोस् किसानलाई मल युवालाई रोजगार मिलोस् माटोलाई जल

0: कृष्ण घरती मगर सुनसहरी गाउँपालिका एक सेरम रोल्पा रोल्पा जलजला सेवा समाज दोहा कतारका उपाध्यक्ष एवं नेपाल मगर संघ शाखा कतारका सहानीय एरिया समितिका अध्यक्ष दोहा कतारबाट
1: नया उमंग नया उत्साह अनि लिएर हर्ष फेरि आयो नया वर्ष विकासलाई गति मिलोस् किसानलाई मल युवालाई रोजगार मिलोस् माटोलाई जल।

0: कृष्ण घरती मगर सुनसहरी गाउँपालिका एक सेरम रोल्पा रोल्पा जलजला सेवा समाज दोहा कतारका उपाध्यक्ष एवं नेपाल मगर संघ शाखा कतारका सहानिया एरिया समितिका अध्यक्ष दोहा कतारबाट
1: नयाँ उमङ्ग नयाँ उत्साह अनि लिएर हर्ष फेरि आयो नयाँ वर्ष विकासलाई गति मिलोस् किसानलाई मल युवालाई रोजगार मिलोस् माटोलाई जल।

बसंत ऋतु को हरियाली बहार संगई भित्रिएको नयाँ वर्ष 2083 साल को हर्ष उल्लासमय पावन अवसर में मेरो घर में रहनुहुने संपूर्ण मेरा घर परिवार गाउँघर का आफन्तजन इष्ट मित्र दाजु भाई दीदी बहिनी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक में मलाई कुबेर मगर भनेर चिन्नु हुने स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका समस्त नेपाली आमा बुबा दाजु भाई दीदी बहिनी सुख शांति सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायु को कामना सहित शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

0: कृष्ण घरती मगर सुनसहरी गाउँपालिका एक सेरम रोल्पा रोल्पा जलजला सेवा समाज दोहा कतार का उपाध्यक्ष एवं नेपाल मगर संघ शाखा कतार का सहानीय एरिया समिति का अध्यक्ष दोहा कतार बाट
1: नया उमंग नया उत्साह अनि लिएर हर्ष फेरी आयो नया वर्ष विकासलाई गति मिलोस किसानलाई मल युवालाई रोजगार मिलोस माटोलाई जल
2: हाँ

0: कृष्ण घरती मगर सुनसहरी गाउँपालिका एक सेरम रोल्पा रोल्पा जलजला सेवा समाज दोहा कतारका उपाध्यक्ष एवं नेपाल मगर संघ शाखा कतारका सहानिया एरिया समितिका अध्यक्ष दोहा कतारबाट
1: नयाँ उमङ्ग नयाँ उत्साह अनि लिएर हर्ष फेरि आयो नयाँ वर्ष विकासलाई गति मिलोस् किसानलाई मल युवालाई रोजगार मिलोस् माटोलाई जल